मैं तो महंगा तंग में हुआ इनरवी की एक्स का एफएम नॉर्थ कब गया डिपार्टमेंट दी ही अच्छो की कवि